ना सुन सुन सुन बुरा, ना देख देख देख बुरा, ना बोल बोल बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा।